0: बोलो बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो हे बोलो
1: तुम्हारा जो भी काम हो मुझसे कहो
0: कुछ तो बोलो
1: मैं कर दूँ।
2: अच्छा बेटे अब तो जाके सो जा।
1: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ।
2: आओ आओ बेटे मैं तुम्हें सुना दूँ।